0: वाह वाह वाह मी खुरी के लवे दो दीदार के लवे
1: और खुरी के लवे
0: हिंगे मिला वाडू वा हाल मा दो ओके लवा गेनेस्ते ना वर उफार दो हके दे मके वेलांगे
1: बाय
0: बाय.

के उभरने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं के शर्मा के झुकने पे, या लिखूं पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं सफर।

शक्केन्नेते हम कशवरुं एवरें सिर्रुकुरा खंत काय फाळुकुरा खंत अल्लाह देने वड़िगेंवेते हम कशवरुं बड़ावे गन्न मीहुं देके एकलांगे लोभिवे वड़िगेन्नेन्नुवेते।

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा मैं।

0: बस पोगे फिल्म था तनुने आदि नहीं फिल्म था ता
1: गिना हिंदी फिल्म बिलने
0: ओके मिया तो मिया थी हम हिंदी फिल्म थी बुना है नागा फविस्तो
1: हिंदी फिल्म है इन्ना
0: हिंदी फिल्म तक कौन फिल्म है मिनेगी
1: बदमाश कंपनी तो कोई कोरिया के फिल्म है तो
0: बदमाश कंपनी नागा फ मिया थी मी फिल्म के हम लावे कुन फुरत हम फाशा मादो लावे तं इंगे तो मी फिल्म के ज़ाइनब दे वारा एक कला हेवी मेटल टाइप के लवा लवा दो मी हुन्नानी
1: असो लावा तक इन फिल्म के नो बदन हम ओला ली दे कम को फिलाने फिल्म गे इन आने गेंगुले फॉर इन स्टोरी आई जस्ट कम दिए
0: हिंगा हे फुरत मा एकम फिल्म के लावे तकुन लावे फुरत मा हरमें अडुई वाला नी हम तेरे लवे सेनो
1: ओके